0: चाम यो उस्मान जी से फपासीरु चलो
1: यो आए लाइटी जी अखोइट में जी अले अखोइट अखोइ बा बा कर लाइन में विचार फुले टेलीफोन करना तो टेलीफोन मोले अन्न के लिए आते हो
0: अले टेलीफोन ना सा फरा फरा न्यू
1: क्या ना लाइट वाह शेयर अरे फॉप ता जुरी सजेंगे करना तो मात बसारीन करना उस्मान सीसरीन करना उस्मान कोरीन करना की नका जेने मारोनीन असीसीन असीन ने ना अलाज़ ओमर सें जेना फॉप एम पूरे वो याई का फॉप in a gen qualify yeah I can pick up up yes yeah are
0: okay
1: yeah afa afa jaga choy pop president
0: okay
1: what if I pop room pop yeah they money mangi yeah they money ange botam yep
0: ataya bi
1: ataya mune ganyo nyure na glola mo
0: ataya bi de
1: mune ganyo nyure na glola mo
0: bahnu dal
1: Jam juga,
0: kagak rebu.